0: connect your dream, connect your future, stay, connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. सिकला गण्डकी चार पूरे गुड़ा वाट इन डिपार्टमेंट भवन सन्डे मोबाइल 98562384 और 98562383।

0: हेरिरहेको थियो।
1: एनुअल सेरेमनीको दिन त ढि परे पर्ला, प्रपोज ठोक्दिन कि क्या हो?
0: साँच्चै एनुअल सेरेमनी चाहिँ कहिले हो नि?